एल जी ले ले आयो नया एल जी एसेंशियल सीरीज अब किफायती मूल्य में रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन एसी को कम्प्लीट रेंज 10 वर्ष को वारंटी सहित 0% नो कॉस्ट ईएमआई नागरिकता भए पुग्छ हर एक घर को खुशी घर घर में एल जी लाइफ गुड।

माइंड तू करे ब्लो, बाकी करे शाइन तू करे ग्लो। जीन्स डाली डाली तूने जो वो तेरी बूटी पे टाइट बेबी जैसे मेरा फ्लो। बेबी गॉड डैम तू है 100 बाकी एवरेज तू है सैवेज बेबी तू है रॉ। मुझे तेरी बारी की हर वो चीज लगे सेक्सी जो बाकियों को लगती है फ्लॉ। Baby let's go right now, देखो मुझे वेट ना इतनी कराओ। लक तेरा लीन बात तेरी मीन टाइटन पे है तो क्यों खाती भाव।

0: मैं सारे काम काज करूँ, तेरे मुसल के ईगो का मसाज करूँ, तेरा जो मतलब खोया गलती है तेरी और थाने जाके FIR में लॉन्च करूँ। जानती है कि मैं तुझे पैसे लाऊँ, ये जानती है तेरी आत्मा को मिलती ही शांति है। मुझे इस काम पे लगा के बंद ढूंढता रहूँ मैं तेरा झूम का।
1: अरे बहन कितना बेबर कहना, तेज हवा से बच के रहना, गिर जाए तो फिर ना कहना झुमका गिरा रे।
2: झुमका
1: झुमका
2: झुमका
1: झुमका
2: झुमका।

0: Morgan. वो बदल गया
1: रघुनाथ कोई विशंका अपने प्यार का बजा दो लंका तेरे मेरे बीच में जो कोई भी आया लगा दो लंका छोड़ छाड़ के दुनियादारी बस तेरे पीछे पड़ गया मैं सपनों में तो ऑलरेडी दौड़ी वोड़ी चढ़ गया मैं मुझको